0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: आवारण फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो धनी क्रिस्चियन लुइडेन ख्रिस्टले लागि शोभा बो दुई जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 68 रङ्गी स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिनै याङ तिलमा तिबा विषय द निरन्तरता पिन्जीव मुला जुन धर्म पालन लामा कृष्णका देन साचिन परमेश्वरलाई आत्मज्ञान ब्रावा येसु ख्रिस्ट श्यामला सम्बन्धरी शोभा देदा बारी हिन्द रोमी 8 अध्यायला 1-2 थेदासेलमा दाहेन से ख्रिस यसोदेन छ्याम गिक तब मी गदे परमेश्वर से सजै अभिन तिग्द विषम ख्रिस यसु ज्ञाम जुनी पिनमा परमेश्वर आत्मना शक्ति से याङदा पाप देन शिवला शक्ति ज्ञाम थार्ना लबा मुला जब याङ यसु ख्रिस से याङला लागिरे क्रुसी तिगा लसुजी बिसी गोमुला याङ धर्मला बन्धन ज्ञा मुक्त ताबरी हामला परमेश्वर ज्ञान दर्यम परमेश्वर द ताङमा शोभा प्रयास लबा गे लजिबा अरे याङ द था मुला कि याङ नच्छा नोन परमेश्वर द ताङमा शोभन मुला देन याङ से लबा गे गदे याङ परमेश्वर द ताङमा शोभा इच्छा से आइन्बा तसै याङ द था मुला कि याङ परमेश्वर नोन परमेश्वर धर्मी सन्तान हिन्बा हेन्दे दर्यम याङ परमेश्वर से याङला लुइरी बाबा अद्भुत छुटकारा चन्द्रदा जुबरी प्रेरित ताबा मुला रोमी 5 अध्याय 1 थेत बासेनमा याङला विश्वास ज्ञाम सेन याङदा परमेश्वर द सेम निवा मी दोना लब मुवा ओछे याङला प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेन याङ परमेश्वर देन छ्याम दिग्पा मुला जब याङ यसु से याङला लागि तिगा लसुजी विवाद तामला परिणाम स्वरूप याङ आत्मिक रूपले हाला हिन्म बिसी सेमुला चुसे याङदा देन शान्ति पिनमुला चिन्ता हटम लमुला लोङमा हटम लमुला थेन्दे याङ याङला तिङ्री परमेश्वरला आनन्द लक्षम परमेश्वर द प्रेम लबरी देन सेवा लबरी स्वतन्त्र तमुला दुई कुरन्ती 3 अध्याय 17 तिग्द विषम प्रभु आत्मा हिन्न थेदबासेलमा जुन मि देन छ्याम प्रभुला आत्ममुला खे मि खालैला तहरी आता धार्मिक सम्बन्धरी शोभा देन परमेश्वरलाई लागे गे कदे पुरा लाभरे याङला रङलन शक्ति प्रयोग लाभ प्रयास लाभला सट्टा याङ धर्म ज्ञान पुराण स्वतन्त्री स्वजीव मुला याङ परमेश्वर देन एकतरी मुला रो आत्मज्ञान याङ देन ताम लसुगो याङ रोला आत्मा से जेखेन पिनबरी हामला स्वतन्त्री ब्राला याङ मिगदेला नियम देन अपेक्षाका धेरै खिबा आरे याङ रङ्ल शरीर सफा लाभ प्रयास लजिबा आरे याङ परमेश्वरला अद्भुत मायारी केन्द्रित मुला केन्द्र स्यान्दोदा किजिबा मुला तिग्द विषम याङ परमेश्वरला आत्मज्ञान प्रभा मुला पहिलो कुरान्थी 1 अध्यायला 30 बरु परमेश्वर सेन एनी गदेदा ख्रिस यसु देन छ्याम गिक शोभा मुला परमेश्वर सेन ख्रिस याङला ज्ञान बुद्धि दोभा मुला थेराङलासी ख्रिस ज्ञाम सेन याङ द परमेश्वर द सेम निभा मि सोजी ओछे याङला पापला सै फासी याङ द चोखो सोसी फेवा मुला परमेश्वर से याङ चुराङलासी नोन सोला विषम सेम लसी मुला चिन्ता देन लोङमासी आइन्बा तिग्द विषम याङ मन मुला कि याङ देन बुद्धि वा स्रोत साधनला चाङना मुला याङ लुइला पूर्वत पुनतरी ब्राजीबा मुला चु लुइरी ताबा योजनाका दे छोना लाभ्रे परमेश्वर बुद्धि प्रयोग लवन मुला याङ धार्मिकता पवित्र देन मुक्तिदाता नोसे मुला जुन याङला रङलन गेला परिणाम आइन्बा चु परमेश्वर ज्ञान याङदा निशुल्क उपहारला रूपी हाबा आइन्बा रोमी 8 अध्यायला 14 तिग्न विषम परमेश्वरला आत्मा से उनबा ज्ञानरी ब्रभा मिगदे जे परमेश्वरला कोला गदे हिन्न रङला बेनन योजना कदे किन्सुगो थेनी गदे बन्डल लसुगो थेने थेनी गदे रद्दीला टकरिरी ब्याङ्सुग नम्र सुग खेन्दे राङला परमेश्वरलाई आत्मा ज्ञान निर्देशित ताबरे पिन्सुग यसिसे राङला लागे फान्सु व पुरान छुटकारा दाबी लस्युग जब रङचु लस्युला न ग्यारेन्टी पिन्न कि राङला लुई चमत्कारी दाबका दे देन सफलता से भर ताला जुन जेखेन आत्मज्ञान ब्रबका दे ज्ञान जेखेन ताबरी हमला थेन्दे रङसे राङला लागे स्वर्गरी इनाम कदे जुन रङसे आनन्द किन्सुला जब यसु याकर्की दिन मुक्परी दोषी याङदा दिम भेला लाबरी हाला आमेन रङिला जीवनले परमेश्वरले प्रशस्त मात्र आशिष दिन्छु गई धन्यवाद प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 धन्यवाद हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार
0: Time check. It's 7 p.m. अहिले साँझको 7 बजेको छ।